दुखी ब्रह्म न कोई एक घर माठी दलित्री थिए बालक तीना पुत्र उनका आपू दुई दंपति सलाह करी ज्येष्ठ बाबू।

0: कश्या माता कश्या पिता कश्या भाई कश्या श्रीमती कश्या छोरा
1: छोरा
0: कसो धन सम्पत्ति के लानु छैन।

0: दुर्गा प्रसाद सेवापति कानून के साथ श्रृंखली सुनसार सुबह में की नारी कर चीन भारी विपत्ति पति से जाई विमति कर चिंता पिटले गुरु देवता राजा रूप भला मान सका निदान खाली है बंकन कहीं ज्योति समना देवी के सौगर मन बहुत चंगा कर चौधरी का हरिषित मुलाका नगर में इच्छा वर्तन में विचार मुठे तम्बु जमा कर दी सही तम्बु अली गए प्रयोजित पूछे द्वारिका में
1: नारायण
0: जन्यो बालका ओ जन्यो बालका ओ जगमग करने मन चित हरने।

सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

उद्घोषक तथा गायक मोहन तामाङ, डान्सर तथा मोडल विमला थामी, मुख्य सहयोगी गडुल थामी, कार्यक्रम संयोजक कुलमान थामी, श्री सेतीचन्द्र भूमि संरक्षण समिति, भीमेश्वर नगरपालिका नौ सुर्खी।

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो
1: उकालीमा पनि हजुर मोटर जाँदो रहेछ गिन्ता हत्तेरिका भस्यो यार फेरि हत्ते

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

नमस्कार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्जबाट म बदे प्रसाद सापकोटा आज विक्रम सम्बत 2083 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सन् 2026 जुन 18 तारिक आषाढ 4 गते बिहिबार चौथी तिथि अब स्तुति गरौ आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षण कल्पे भरे।

नवश का इशारे दौलतले परिपूर्ण होस पवन जाई नई परे का घरे मंडा खुन सवाले दुर्योधन समा

0: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: मेरो नाम सुविधा पोखरेल जफेबाट आको म। एउटौ शंखका पाला भूषित करौ मालस्ती माला धरौ देवौ द्वारौ तिसमा चानन निलौ नागरी गोवर्धन हो तिरी रक्षे बलि दक्षे।

0: एक बात बोले श्री कालिका माई भगवती की
1: जय।
0: भक्तर भगवान की
1: जय।
0: भक्त वत्सल भगवान की
1: जय।
0: सारा भक्त प्राणी की
1: जय।
2: सम्राट महादेव पांडव भाषण कुमार भाषण कालिका घोर से गरुण दाना बहारू नागमा रावण नासिका संचल भाई घुमाने।